पट परवान सच निशान जा कौ आप करे फुरमान। आपे दाता आप प्रतपालो नित नित।

ब्रह्म सुख सागर वर्त परत जहले अंगरिया रहाऊ श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटत तिंगुरिया दीना नाथ अनाथ करुणा मैं साजन मीत पिता महतरिया चरण कबल हृदय।

सोज बैन करीना जीवना त्रिग्रहण संसार जी प्राण सुखदाते आओ निमक निमक बलिहार जी हस अलंबल अलंबन देह प्रभ गर तो उदर गोपाल मोहे निर्गुण मत थोरिया तू सद ही दीन दयाल क्या सुख तेरे समला कबन विधि विचार शरण समाई दास रहत ऊचे अगम अपार सगल पदार्थ आष्ट सिद्ध नाम महारस माहे सो प्रसन्न पय केशवा से जान हर गुण गाहे मात पिता आसत बंध पौ तू मेरे प्राण आधार साध संग नानक भजय बिख तरिया संसार गौड़ी बैरागण रहोए के संत के घर महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद है कोई राम प्यारो गावै सर्ब कल्याण सूख सच पावै राउ बन बन खोजत फिरत बैरागी बिरले काहू एक लिबलागी जिन हर पाया से वडपागी ब्रह्मादिक सनकादिक चाहै जोगी जति सिद्ध हर आहै जिसे प्राप्त सो हर गुण गाहै ताकि शरण जिन बिसरत नाही बडभागी हर संत मिलाही जन्म मरण ते मूले नाही कर कृपा मिल प्रीतम प्यारी बिनो सुनो प्रभु ऊच अपारी नानक मांगत नाम आधारी राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कवन गौन प्राण पात मिलो मेरी माई रहाऊ रूपहीन बुद्ध बालहीने मोहे परदेश न दूर ते आई नाहन गर्भ न जोबन माती मोहे अनाथ की करो समाई खोजत खोजत पई बैरागणु प्रभ दर्शन कौह फिरत तिसाई दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक साध संग मेरी जलन बुझाई गौड़ी महला पंजवा प्रभ मिलवे कौ प्रीत मन लागी पाए लगो मुहि करो बेनती को संत मिलै बड़ भागी रहाओ मन अरपौ तन राखों आ गए मन की मत मोहे सगल त्यागी जो प्रभ की हर कथा सुनावे अन दिन फिरों तिस पिछै बैरागी पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे पेट्यो पुरख रसत बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौड़ी महला पंजवा नेक सरे पंखी सिमर हर पांख मिल साधु शरण गह पूर्ण राम रतन ही अरे संग राख रहाऊ प्रम की कोई तृष्णा रस पंकज अत तीखण मोह की पास काटनहार जगत गुर गोविंद चरण कमल तांके करो निवास कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम।

सतगुर शरणाई, जिनके बंधन काटे सतगुर तैन साध संगत लिबलाई। पंच जना मिल मंगल गाया, हर नानक भेद ना पाई। मेरे राम राय इन बिद मिलै गुसाई, सहज भया ब्रह्म तिन मह कनाठा। मिल ज्योति जोत समाई, रहाउ दूजा गौड़ी महला पंजवा। ऐसो परचो पायो, करी कृपा दयाल बीठ लाए। सतगुर मुझे बतायो, रहाउ जात कत देखो तत तत तुम ही। मोहि यही विश्वास होए आयो, कै पै करूं अरदास बेनती। जौ सुनतो है रघुरायो, लहयो सहसा बंधन गुर तोरे। ता सदा सहज सुख पायो, होना सा सुई फन होसी। सुख दुख कहां दिखायो, खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा। गुर पर्दा पर्दा खोल दिखायो, नौनद नाम निधान कठाई। तो बाहर कैठ जायो, एक कनक अनक भांत साजी। बहु प्रकार सदा रचायो, कहो नानक परम गुर कोई है। इव तत्त तत मिलायो, गौड़ी महला पंजवा। औद कटै दिन सरै नारी, मान गुर मिल काज सवारी। रहाउ करो बेनंती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला। तीहां खाट चलो हर लाहा, आगै बसन सुहेला। ए संसार विकार सासे, मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाए पियाए, हर रास अकथ कथा ते न जानी। जा को आए सोई बिहाज हो, हर गुर ते मन है बसेरा। निज घर महल पावो सुख सहजे, बहुर न होई गो फेरा। अंतर जामी पुरख बिधाते, श्रद्धा मन की पूरे। नानक दास एही सुख मांगै, मोक कर संतन की धूरे। गौड़ी महला पंजवा। राख पिता प्रभ मेरे, मोहे निर्गुण सब गुण तेरे। रहाउ पंच बिखादी एक गरीबा, राखो राखन हारे। खेद करें यार बहुत संतावे, आयु शरण तुहारी। कर कर हारियो अनक बहु पाती, छोड़े कतहु नाही। एक बात सुनता की ओटा, साध संग मिट जाही। कर कृपा संत मिले मोहे, तिन ते तीर्ज पाया। संति मंत लीदियो मोहे निरपाओ, गुर का शब्द कमाया। जीत लए ओए महा बखादी, सहज सुहेली बाणी। कहो नानक मन भया प्रगासा, पाया पाद निरबाणी। गौड़ी महला पंजवा। ओहो अबनासी राया, निरपौ संग तुमार बसते। इह डरन कहां ते आया, रहाऊ एक महल तू होए अपारू। एक महल अग्नि मानो, एक महल तू आपे आपे। एक महल गरीबानो, एक महल तू पंडित भगता। एक महल खल होता, एक महल तू सब किश ग्राहज। एक महल कछु न लेता, काठ की पुत्री कहां करे बपुरी। खिलावन हारू जाने, जैसा भेख करावै बाजीगारू। ओ तैसो ही साज आने, अनक कोठरी बहुत भांत करिया। आप हुआ रखवारा, जैसे महल राख तैसे रहना। क्या ही करे बिचारा, जिन किश किया सो ही जानै। जिन यही सब बिद साजी, कहो नानक अपरंपर स्वामी। कीमत अपने काजी, गौड़ी महला पंजवा। छोड़ छोड़ रे बिख्या के रसुआ, उर्ज रहो रे बावर गावर। ज्यों किरख हर आयो पशुआ, रहाओ जो जान है तू अपने का जाय। सो संग न चाल तेरह तसुआ, नांगो आयो नांग सदासी। हो फेर फिरो अर काल ग्रसुआ, पेख पेख रे कसुंभ की लीला। राच माच तिनहू लव हसुआ, सीजत डोर दिनस अर रैणी। जी को काज न किनो कछुआ, करत करत वही बिरधानो। हारियो उकते तन की नसुआ, ज्यो मुहियो उन मोहनी बाला। उसते कटै नाही रुच चसुआ, जग ऐसा मोहे गुरह दिखायो। ताओ शरण पर्यो ताज गर्भसुआ, मार्ग प्रभु को संत बतायो। दृढ़ी नानक दास भगत हर जसुआ, गौड़ी।

तुझ बिनु कबन हमारा, मेरे प्रीतम प्राण आधारा रहाऊ। अंतर की बिद तुम ही जानी, तुम ही सजन सुहेले। सर्व सुखा मैं तुझते पाए, मेरे ठाकुर अगहा अतुले। वर्ण न साको तुमरे रंगा, गुण निधान सुखदाते। अगम अगोचर प्रभ अविनाशी, पूरे गुर तय जाते। भ्रम पौ काट किए न केवल, जब ते हो मैं मारी। जन्म मरण को चूको सहसा, साध संगत दरसारी। चरण पखार करो गुर सेवा, बार जाओ लख बरिया। जे प्रसाद एह पौ जल तरिया, जन नानक प्रे संग मिरिया। गौड़ी महला पंजवा, तुझ बिन कवन रिझावै तोही। तेरो रूप सगल देख मोही रहाउ। सुर्ग पयाल मृत पू मंडल, सर्व समानो एक ओही। शिव शिव करत सगल कर जो रहै, सर्व मया ठाकुर तेरी दोही। पातत पावन ठाकुर नाम तुमरा, सुखदाई निर्मल शीतलोही। ज्ञान ध्यान नानक वड्याई, संत तेरी सौगाल गलोही। गौड़ी महला पंजवा, मिलो प्यारे जिया, प्रभ किया तुम्हारा किया रहाऊ। अनक जन्म बहु जोनी भ्रमया, बहुर बहुर दुख पाया। तुमरी कृपा ते मानुख दे पाई है, देह दर्स हर राया। सोई होआ जो तिस भाणा, अवर न कन्ही कीता। तुमरै भाणै भरम मोह मोहया, जागत नाही सूता। बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारी, कृपा निध दयाला। राख लेहो पिता प्रभु ने मेरे, अनाथा कर प्रतपाला। जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन, साध संगत कै पाछै। कर कृपा तूर देहो संतन की, सुख नानक हे बांछै। गौड़ी महला पंजवा, हौं ता कै बलहारी, जा कै केवल नाम आधारी रहाउ। महिमा ता की चेतक गनियै, जन पार ब्रह्म रंग राते। सुख सहज आनंद तिना संग, उन समसर अवरना दाती। जगत उदाहरण से ही आई, जो जन दर्श प्रयासा। उनकी शरण पर सो तरिया, संत संगत पूर्ण आसा। ताक चरण पर उता जीवा, जन कै संग निहला। भगतन की रेण होए मन मेरा, होहे प्रभु कृप हो कर प्रभु कृपाला। राज जोबन अबद जो दिसै, सब कैच जुग मह काटया। नाम निधान सद नर नव तन निर्मलो, एह नानक हर तन खाटया। गौड़ी महला पंजवा, जोग जुगत सुन आयो गुर ते। मोह कौ सतगुर शब्द बुझायो रहाउ। नौ खंड प्रथमी इस तन मह रवयाउ, निमख निमख नमस्कारा। दीख्या गुर की मुंदरा कानी, दृढ़ो एक निरंकारा। पांच चेले मिल पए एकतरा, इकस कै वस किए। दस बैरागण आज्ञाकारी, तब न निर्मल जोगी थिए। भरम जराई चराई बपूता, पंथ एक कर पेखिया। सहज सुख सो किन्नी भुगता, जो ठाकुर मस्तक लिखिया। जह पौ नाही तह आसन बांधेउ, सिंगी अनहत बानी। तत विचार डंडा कर राखेउ, जुगत नाम मन पानी। ऐसा जोगी वडभागी भेटै, माया के बंधन काटै। सेवा पूज करहु तिस मूरत की, नानक तिस पग जाटै। गौड़ी महला पंजवा, अनूप पदार्थ नाम सुनो, सगल ते आए ले नीता। हार शाव औखद जां कौ गुर दिया, तां के निर्मल कीता रहाउ। अंधकार मिटो एह तन ते, गुर शब्द दीपक परगासा। भ्रम की जाली तां की काटी, जां कौ साध संगत विश्वासा। तारी ले परजल तारू बिखड़ा, गो मोहित साधु संगा। पूर्ण होई मन की आशा, गुर पेट्यो हर गंगा। नाम खजाना भगती पाया, ता मन तानु तृप्त आगाए। नानक हर जियो तां कौ देवै, जां कौ हुक्म मनाए। गौड़ी महला पंजवा, दया मया कर प्राण पत मोरे। मोहे अनाथ शरण प्रभ तोरी, अंध कूप मह हाथ दे राखो। कछु सियाण भुगत न मोरी राउ। कर्ण करावन सब किछु तुमही, तुम समरथ नाही अन होरी।
तुमरी गात में तो तुम ही जानी से सेवक जन भाग मथोरी अपने सेवक संग तुम प्रभ राती पोत पोत भगतन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओह चंद चंगोरी राम संत मह भेद कृष नाही एक जन कई महला करूरी जा कहिए प्रगट प्रभ हुआ अनजन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ पार अत ऊचे सुखदाते प्रभ प्राण अदोरी नानक को प्रभ की जय कृपा उन संतन कै संग संगोरी गौड़ी महला पंजवा तुम हर सेती राते संत हो निबाहे लेहु मो कौ पुरख बधाते ओढ़ पहुँचावो दाते राओ तुमरा मर्म तुमाही जानिया तुम पूर्ण पुरख बधाते राखो शरण अनाथ दीन कौ करो हमारी गाते तरण सागर बोहित चरण तुम्हारे जानो तुम जानो अपनी पाते कर कृपा जिस राखो संगे ते पार पराते ईत ऊत प्रभ तुम समरथा सब

हर नाम मेरा मन जापै, संत प्रसाद नानक हर भेटे, मन तन शीतल तरापै। गौड़ी महला पंजवां, सहज समायो देव, मोको सतगुर पई दयाल देव राव। काट जेवरी दिए कियो दास रहो, संतन टहलायो, एक नाम को थियो पुजारी। मोको अचार्य गुरह दिखायो, भयो प्रगास सर्व जियारा, गुर ज्ञान मन प्रगटायो। अमृत नाम पियो मन तृप्तिया, निरपय ठहरायो, मान आग्या सर्व सुख पाए, दुख ठाउ गवायो। ज्यों सो प्रसन्न पै प्रभ ठाकुरु, सब आनंद रूप दिखायो। ना किस आवत ना किस जावत, सब खेल कियो हर रायो। कहो नानक अगम अगम है ठाकुर, भगत टेक हर नायो। गौड़ी महला पंजवां, पार ब्रह्म पूर्ण बर परमेश्वर, मन तांकी ओट गही जारी। जिन तारे ब्रह्मंड खंड हारू, ताको नाम जपी जारी राव। मन की मत त्यागो हर जन, हुक्म बूझ सुख पाई रे। जो प्रभ करै सोई बल मन हो, सुख दुख ओही त्याई रे। कोट पत ते उधारे खिन मै, करते बार ना लागै रे। दीन दर्द दुख भंजन स्वामी, जिस भावै तिसै नवाजै रे। सब को मात पिता प्रतपाल को, दी जी प्राण सुख सागर रे। दें दे टोट नाही तिस कर तय, पूर रहे हो रतनागर रे। जाचक जाचै नाम तेरा स्वामी, कट कट अंतर सोई रे। नानक दास तां की शरणाई, जाते ब्रथा न कोई रे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर कबहु न मनो बिसारे, इहां उहां सर्व सुख दाता, सगल कटा प्रतपारि राउ। महाकाष्ट काटे कन पीतर, रसना नाम चितारी। शीतल शांत सुख हर शरणी, चल जलती अग्न निवारे। गर्भ कुंत नरक ते राखै, निर्भव जल पार उतारे। चरण कमल अराधत मन महे, जम कीर्त प्रास बिदारे। पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर, ऊंचा गम अपारी। गुण गावत त्यावत सुख सागर, जुए जन्म न हारे। काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो, निर्गुण के दाता रे। कर कृपा अपनो नाम दी जय, नानक सद बलहारी। राग गौड़ी चेती महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुख नाही रे हर भगत बिना, जी जीत जन्म इह रतन मोलक। साध संगत जप कठिना राउ, सुत संपत बनता बिनोद। छोड़ गए बहु लोग भोग, हैवर गैवर राज रंग। त्याग चलो है मूड़ नंग, चुआ चंदन दे फूलिया। सो तान धार संग रूलिया, मोहे मोहिया जान दूर है। कहो नानक सदा हजूर है, कहो नानक सदा हजूर है। गौड़ी महला पंजवा, मान धार तरबे हर ना मनो। सागर लहर संसार संसार, गुरबोहित पार ग्राम नो राव। काल काल खंधियारिया, गुर ज्ञान दीपक उजियारिया। देख देखिया पसरी अत करणी, उबरे जप जप हर गुणी। मतवारू माया सोया, गुर पेटत ब्रह्म पव खोया। कहो नानक एक त्याया, घट घट नदरी आया। गौड़ी महला पंजवा, दीवान हमारो तो ही एक, सेवा थारी गुरह टेक राव। अनक जुगत नहीं पाया, गुर जाकर लै लाया। मारे पंच बिखा दिया, गुर कृपा ते दल साधिया। बख्शीस बजो मल एक नाम, सुख सहज आनंद विश्राम। प्रभ के चाकर से फले, नानक तैन मुख उजले। गौड़ी महला पंजवा, जी अरे ओला नाम का, अबर जे करन कराव नो। तिन मह पौ है जाम कार, अवर जतन नहीं पाई है। वड्डे भाग हर त्याई है, लाख हिकमती जानी है। आगे चल नहीं मानी है, अहंग बुद्ध कर्म कमावणे। ग्रह बालू नीर बहावणे, प्रभ कृपाल कृपा करै। नाम नानक साधु संग मिलै। गौड़ी महला पंजवा, बार न बलहार न लख बरिया।
नामोहो नाम साहब को प्राण अधरिया राव कर्ण करावण तू ही एक जी जंत की तू ही टेक राज जोगन प्रभ तू तनी तू निर्गुण तू सरगुणी ईहा ऊहा तुम रखे गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभ तो जानू नानक तकिया तू ही तानू गौड़ी महला पंजवा हर हर हर आराधिया संत संग हर मन बसै परम मोह पौ साधिया रहाउ वेद प्राण सिमरत पाने सब ऊच विराजत जन सुने सगल स्थान पै पीत चीन राम सेवक पै रह तकीन लख चौरासी जोन फिरहै गोविंद लोक नहीं जन्म मरहै बल बुद्ध सियाण पहु मै रही साहार साध शरण नानक रही गौड़ी महला पंजवा मन राम नाम गुण गाइए नीत नीत हर सेवियै सास सास हर त्याई राउ संत संग हर मन वसै दुख दर्द अनेरा ब्रह्म नसै संत प्रसाद हर जापिए सो जान दुख न व्यापिए जा को गुर हर मंत्र दे सो उभरिया माया अगन ते नानक कौ प्रभ मयाद कारू मेरे मन तन वासै नाम हारू गौड़ी महला पंजवा रसना जपिया एक नाम इहां सुख आनंद कणा।

माधव हर हर हर मुख कहिए, हम ते कछु न होवै स्वामी, ज्यों राखो त्यों रही रहाउ। क्या किश करे के करने हारा, क्या इस हाथ बिचारी, जित तुम लावो तित ही लागा, पूर्ण खसम हमारी। करो कृपा सर्व के दाते, एक रूप लिव लावो, नानक की बेनंती हर पहे, अपना नाम जपावो। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, दीन दयाल दा मुदर राया जियो, कोट जना कर सेव लगाया जियो, भगत वसल तेरा बिरद रखाया जियो, पूर्ण सबनी जाई जियो। क्यों पेखा प्रीतम कवन सु करनी जियो, संतां दासी सेवा चरनी जियो, एह जियो बताई बल बल जाई जियो, तिस निव निव लागो पाई जियो। पोथी पंडित वेद कुछ

जोर तुम्हारे सुख बसा सच सबदनी शान रहाऊ सबे गल्ला जातियां सुन कै चुप कियां कद ही सुरत ना लडियां माया मोहड़े।

चहो क्या गणी, सब एकत साज मुठी, एक अध नाई रसी अड़ा, का विरली जाए गुठी। भगत सच्चे दरसे हमे, आनंद करें दिन रात, रंग रते परमेश्वर है, जन नानक तिन बल जात। गौड़ी महला पंजवा मांज, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहर आराधी है पूर्ण सतगुर ज्ञान, रहाउ जित कट वसै पार ब्रह्म, सोई सुहावा थाउ। जम कंकर नेड़ न आवई, रसना हर गुण गाऊ। सेवा सुरत न जानिया, न जापै आराध, ओट तेरी जग जीवना, मेरे ठाकुर अगम आगाध। भई कृपाल गुसाइया, नठे सोग संताप, तत्ती वाउ न लगई, सतगुर रखे आप। गुर नारायण दयो गुर, गुर सच्चा सिरजनहार, गुर तुठै सब किछ पाया, जन नानक सद बलिहार। गौड़ी माज महला पंजवा, हार राम राम राम रामा, जप पूरन होए कामा राउ। राम गोबिंद जपिंदिया, हुआ मुख पवित्र, हार जास सुनिया जिस दे, सोई पाई मित्र। सब पदार्थ सब फला, सर्ब गुणा जिस माहे, क्यों गोविंद मनो विसारी है, जिस सिमरत दुख जाहे। जिस लड़ लगे आए जी भी आए, भव जल पई है पार, मिल साधु संग उधार होए, मुख उजल दरबार। जीवन रूप गोपाल जास, संत जना की रास, नानक उबरै नाम जाप, दर सच्चा ऐसा बास। गौड़ी माज महला पंजवा, मीठे हर गुण गाओ जिंदू तो, मीठे हर गुण गाओ, सच्चे से तीरतिया, मिलया न था वे थाओ राओ। होर साध सब फिकया, तन मन फिका होए, फिक बिन परमेश्वर जो करे, फिट सो जीवन हो सोए। आंचल गह कै साधका, तरनाई संसार, पार ब्रह्म आराधी है उदरै सब परवार। साजन बंद सुमित्र सो, हर नाम हृदय दे, अवगुण सब मिटाहे कै पर उपकार करे। माल खजाना थे धार, हर के चरण निदान, नानक जाचक दर तेरै, प्रभ तुदनो मंगै दान। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग गौड़ी महला नौवा, साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अनस भागो राव। सुख दुख दोनों सम कर जाने, और मान अपमाना, हरख सोग ते रहे अतीता, तिन जग तत बशाना। उसत निंदा दो त्यागै, खोजै पद निर्बाना, जन नानक एह खेल कठिन है, किन्हूं गुरमुख जाना। गौड़ी महला नौवा, साधो रचना राम बनाई, एक बिनसह का सर मान, आचार्य लख्यो न जाई रहाऊ। काम क्रोध मोह बस प्राणी, हर मूर्त बिसराई, झूठा तन साचा कर मान्यो, ज्यों सुपना रह नाई। जो दिसै सो सगल बिनासै, ज्यों बादर की छाई, जन नानक जग जान्यो मिथ्या, रहो राम सरनाई। गौड़ी महला नौवा, प्राणी को हर जास मन नहीं आवै, अहनस मगन रहे माया मैं, कहो कैसे गुण गावे रहाऊ। पूत मीत माया ममता स्याऊ, एह बिद आप बंधावे, मृग तृष्णा ज्यों झूठो ए जग, देखता से उठतावे। मुक्त भुगत भुगत मुक्त का कारण स्वामी, मूढ़ता ही बिसरावे, जन नानक कोटन मैं को, भजन राम को पावै। गौड़ी महला नौवा, साधो इह मन कहो न जाई, चंचल तृष्णा संग बस है, जाते फिर ना रहाई रहाऊ। कठिन क्रोध कट ही के पितर, जह शुद्ध सब बिसराई।
रतन ज्ञान सब को हर लीना, सांसों काश ना बसाई। जोगी जतन करत सब हारे, गुणी रहे गुण गाई। जन नानक हर पै दयाला, ताओ सब बिद बन आई। गौड़ी महला नौवा। साधो गोविंद के गुण गावो, मानस जन्म मूलक पायो। बिरथा काहे गवावो राव, पातत पुनीत दीन बंद हार। शरण ताहि तुम आवो।

कोऊ माई भूल्यो मन समझावै, वेद पुराण साध मग सुन करु, निमखन हर गुण गावै रहाऊ, दुर्लभ दे पाए मानस की बिरथा जन्म सिरावै। माया मोह महा संकट बन, तां स्यो रुच उपजावै, अंतर बाहर सदा संग प्रभ, तां स्यो नेह न लावै। नानक मुगत ताहे तुम जानो, नानक मुगत ताहे तुम मानो, जेह घट राम समावै। गौड़ी महला नौवा, साधो राम शरण बिसरामा, वेद पुराण पढ़े को हे गौन, सिमरे हर को नामा।

रतन जन्म अपनो तहारयो गोबिंद गत नहीं जानी निमख नलीन भयोग चरण नस्यो बिरथा औध सिरानी।

आज संग रहे हैं। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊ, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊ। सेवक सेख हमारे तारी है, चौन चौन सतर हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे अबर है, मरण काल का त्रास ने भर आए।

शांत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए सबजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी सब कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताही हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी, सेवकन को

देह कर सब हूं। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझो चारे। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अरयालम। निरंकार निर्भकार निरलंब, आद अनिल अनाद असंभ।

प्रकाश भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत न पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पेन पेन तो हे तेती।

सेखो बहार सिख संगरू दुष्ट जिते उठ बत उठ पाता सकल मलेश करुरण काता जे अस तुज तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तवै मरी।

निकट नहीं आए। रक्षा होए ताहीं सब काला, दुष्ट अरिष्ट उतरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहि नहर हो, ताके ताप तन कमो हरे हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह।

सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन बजियां वधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गा बण आईया

आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया तर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया

गुरु अर्जुन देव जी का कातिल दरअसल जहांगीर ही थी, पर जहांगीर तो इलावा मुर्तजा खां ते चंदू का भी हाथ थी। चंदू बादशाह जहांगीर का शाही दीवान थी। जब चंदू की धी मुटियार हुई तो उसने अपनी धी वास्ते चंगा वर्कर लभन लई एक पांडे ते एक नाई नू जो कुछ समझा के तोरिया है उन्होंने बोला जफा है क्यों दसता है।

चंदू जी की तारीफ की गल सुन के चंदू दीवान खुश होने की बजाय गुस्से में लोहा लाखा हो गया। माया तारी अत अन्ना बोला सब न सुने बहु रोल कचोड़ा दे मां वाक अनुसार चंदू दीवान कह लगा और किथे में शाही दीवान ते किथे अर्जन देव एक फकीर किथे राजसी शक्तियां ते किथे सारा दा डेरा और तुसी चुबारे दी इत मोरी नूं लाए हो। चंदू दीवान गुस्से विच लोहा लाखा होया कह लगा भावे तुसी मेरे मुताबिक चोन ठीक नहीं कीती पर फिर भी मैं तुहाडा मान नहीं तोड़दा जाओ जाके शरण पा आओ। ए सारियां गल्लां दिल्ली दीआं सिख संगतां ने सुन लिया उन्हां दा मन बड़ा परेशान होया क्योंकि सच्चा सिख कदे भी अपने गुरु की निंदा नहीं सुन सकता। गुरु की निंदा सुने ना कान कान घूर के पिछा हटा जे तू प्यार नाल नहीं बिठाउण जोगा संजू देख के कास तो हसदा है जे तू रोंदियां नूं नहीं वराउण जोगा कानू दुख दे दिलां नूं दुखांदा है जे तू जख्मां ते मलम नहीं लाउण जोगा कानू बंदिया कूड़ रिहालदा है जे तू नेकियां नहीं संभाल जोगा। दिल्ली दीआं सिख संगतां ने गुरु अर्जन देव जी महाराज दे नाम एक चिट्ठी लिख के क्यों भेजी आई।

बादशाह जहांगीर तां पहलां ही इस मौके दी उड़ीक विच सी कि कदों गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं शहीद करवाया जावे, क्योंकि ओ उस वक्त हो रही गुरु घर दी महिमा नूं वेख के डर नहीं सी सकदा। ओ आप अपनी कलम नाल सोच के जहांगीरी विच लिखदा है कि दरिया ब्यासा दे नेड़े गोइंदवाल विच अर्जन देव नाम दा इक फकीर रहिंदा सी। उस कोल बड़ी दूर दूर तो हिंदू अते भोले भाले मुसलमान आउंदे सन। उसने अपनी बुजुर्गी दा बड़ा ढोल वजाया होया सी ते किन्ना चौहां पीढ़ियां तो उसदी झूठ दी दुकान बड़ी गर्म सी। ओ गुरगद्दी नूं दुकाने बातल यानी झूठ दी दुकान लिखदा है। कहिंदा है कि मेरे दिल विच इह विचार सी कि जां तां इस झूठ दी दुकान नूं बंद कर दित्ता जावे ते जां फिर इस्लाम धर्म विच लै आंदा जावे। उस किसे ठीक मौके दी उड़ीक विच सी कि उधरो खुसरो वाली घटना वापर गई। खुसरो जो कि बादशाह जहांगीर दा पुत्र सी ते जहांगीर तो बागी हो चुकिया सी अते दूसरा चंदू दीवान ते गुरु साहिब दे वड्डे भरा पृथ्वी चंद ने बल्दी उत्ते होर तिल पा दिता। बादशाह जहांगीर ने मुर्तजा खान ने हुक्म दिता कि गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं गिरफ्तार कर लिया जावे।

सरकार सकती पर ठंडे कौन हन। शांति दे कुंज निमरता दे सागर गंभीरता दे सोने गुरबाणी दे बोध गुरमत दे स्कॉलर पंजवे गुरु नानक शहीदा दे सरताज पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज। इसे कवि ने ठीक ही किया है। इन्हों अखों ने कई पतंगिया उनका लाटा ते सरदिया देखा है। मैं कई रेत चुप पीते गुंचिया डेगा विचली करदिया देखा है। तत्ती रेत से कई नमाजिया मैं कलमा यार दा पर्दा देखा है। पर मैं की दसा अर्जुन देव साईं किदा अग ते सरदिया देखा है। हजरत मियां मीर ईरान दे रहन वाला जो उस वक्त लाहौर विच ही रह रहा सी जब उसने किसी ने जाके दसिया और अपरा जाके अपने यार दी हालत ता देख ता इस सुन के साई मियां मीर दौड़ा आया। आके की देखदा है कि गुरु अर्जुन देव जी महाराज तत्ती तली ते बैठे हुए हैं। सारा शरीर छले छले हो जाता है पर मस्तक डर का मारिया है ते मुखों की कह रहे हैं तेरा सिया मीठा लागे। इस सब कुछ देख के साईं मियां मीर ने गुरु सर ने सवाल किया। मियां मीर ने पूछा सतगुरु ने तरी तपनी वांग तंदूर दाता और तन पर दिता सारा शालिया ने जिवे वेल के गुस्से अंगूर दाता कोमल कलियों तो कूड़ा रेशमा तो जिसम तर के होया मंजूर दाता और कल सख्त उत्ते ते दरी उत्ते एक ही खेल चाहे रबी नूर दाता ते ना ही हाँ जोड़ के बेनती की थी महाराज। मेरे कोलों इस सिरे जरे नहीं जाते मेनू हुक्म दो मैं आज ही लाहौर से दिल्ली भी इतना एट खड़का देंगा। तन गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने बड़ी स्थिरता नाल पूछा साईं जी इन शक्तियां कितों प्राप्त कीतियां। जवाब मिलया जी हजूर को गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने फरमाया इन्हों शक्तियों अतीत वरत सकते सी पर शक्ति वरतना परमात्मा के विरुद्ध बगावत करना है। साढ़े दो निशानी सन असी इस सृष्टि उपर दो नीहां रखनिया सन। अगो हस के सतगुरु कह लगे तू पकड़ा रंग पछाणी नहीं मैं तेरे दिल की जान गई तू मेरे दिल की जानी नहीं। मैं रखना है सन दो नीहा एक शहीदी दी एक हरमंदर दी और तू रखती मैं रखू एक चाह है मेरे अंदर दी।

पंचम पातशाह श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज इन्हें चुट्टी में लिखे गए पर फिर भी गुरु महाराज के चेहरे से शांति ते मन विच टिकाओ सी। इस सब को देख के चंदू दीवान हैरान रह गया। उसने जाके जदो बादशाह जहांगीर ने दसिया तो जहांगीर ने सोचा कि कहड़ा चुट्टी अपनाया जाए जिस नाल कि गुरु साहब नूं इतनी ज्यादा कष्ट पहुंचे। तो उसके दिमाग

सुपने दे विच बेदार हो रहे सी, सुपने च मिठे मिठे बचन सुन रहे सी, पर एकदम चातरक बोल पिया, अखां खुल गई, बस फिर बिरहों का रोग जाग पिया, सुपने च दर्शन होए।

ने खालसा मेरो रूप है खास मारा कहंदे जिथे खालसा आ गया उथे मैं आ गया साडे भी भाग चंगे।

वही जीवन पदवी पाए रहाउ। गोविंद प्रीत सिंह एक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी आप सेती आप खाया, ता मन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समय, बिन भागा ऐसा सतगुर ना पा।

नानक ऐसे सतगुर की क्या ओह सेवक सेवा करे, गुर आगे जियो तरे, सतगुर का पाणा चित करे,

मेरा मन पीजै एहा सेव बनी जियो रहाओ। हर मेरा सिमरत हर मेरा शास्त्र हर मेरा बंदप हर मेरा भाई हर की मैं भूख लागै हर नाम मेरा मन तृप्त है हर मेरा साक अंत होए सख।

तह जाई सो झूठा जो झूठे लागे झूठे कर्म कमाई कह नानक हर का पाणा हुआ कहना कछु ना जाई गुजरी।

सतगुर मिले हर मन वसै सहजी रहे समाई रहाउ जा पहु पाए अपना बैराग उपजे मन आई बैराग है ते हर पाई है हर स्यों रहे समाई से मुकत जे मन जिन है फिर तात ना लागे आई दसवें द्वार रहत करी त्रिभवन सूजी पाई नानक गुर ते गुर होया

प्रीत हर तिस कदे ना विसर हर हर करह सदा मन चीत रहाउ हृदय जिन कह कपट वसै बाहर हूँ संत कहाहे कृष्णा मूल ना चुकई अंत गए पछताहे अनेक तीर्थ जे जतन करे ता अंतर की हूँ मैं कदे ना जाए जिस नर की दुबदा ना जाए धर्म राय तिस देश जाए कर्म होवै सोई जन पाए गुरमुख बूजै कोई नानक विचों हूँ मैं मारे ता हर भेटै सोई गुजरी महला तीजा तिस जन शांत सदा मत निश्चल जिसका अभिमान गवाए सो जन निर्मल जे गुरमुख बूजै हर चरणी चित लाए हर चेत अचेत मना जो इच्छा है सो फल होई गुर प्रसादी हर रस पाव है पीवत रह सदा सुख होई रहाओ सतगुर भेटे ता पारस होवै पारस होए ता पूज कराए जो उस पूजे सो फल पाए दीखिया देवै साच बुझाए बिन पारस पूज ना हो गई बिन मन परचे अवरा समझाए गुरु सदाए अज्ञानी अंधा किस ओह मार्ग पाए नानक बिन नदरी किछु ना पाई है जिस नदर करे सो पाए गुर प्रसादी दे वडियाई अपना शब्द वरताए गुजरी महला तीजा पंच पदे ना कांसी मत उपजै ना कांसी मत जाए सतगुर मिले मत उपजै ता एह सोजी पाए हर कथा तू सुन रे मन शब्द मन वसाए एह मत तेरी थिर रहे ता भरम विचों जाए रहाउ हर चरण हृदय वसाए तू किलविख हो वह नास पंच भू आत्मा वास करह ता तीर्थ करह निवास मनमुख एहो मन मुगद है सोजी किछु ना पाए हर का नाम ना बुझई अंत गया पछताए एहो मन कांसी सब तीर्थ सिमरत सतगुर दिया बुझाए अठ सठ तीर्थ तिस संग रह जिन हर हृदय रहे आसमाए नानक सतगुर मिले हुक्म बुझिया एक वस्या मन आए जो तुद भावै सब सच है सच्चे रह समाए गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडित सुन सिख सच सोई दूजै भाए जेता पढ़ै पढ़त गुणत सदा दुख होई हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सोजी होई हर रस रसना चाख तू ता मन निर्मल होई रहाओ सतगुर मिले मन संतोखी है ता फिर तिशना भूख ना होए नाम निधान पाया पर कर जाए ना कोई कथनी बदनी जे करे मनमुख बूझ ना होए गुरमती घट चान

सो मूर्ख जो आप ना पछाणे सच ना धरे प्यार सच्चे जगत दहकाया कहना कछु ना जाए नानक जो तिस भावे सो करे ज्यों तिस की रजाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गुजरी महला चौथा चौपदे घर पहला हर के जन सतगुर सतपुरखा हम बिनु करूं गुर पास हम कीरे किरम सतगुर सरनाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरदेव मोकौ राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाउ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्तास है मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर करण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम परगास गुजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सत संगत शब्द मन मोह है जप गोविंद गोविंद त्याई है सब को दान दे प्रभ को है मेरे भाई जना मोको गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है रहाउ सुख सागर हर भगत है गुरमत कौला रिद सिद्ध लागे पग ओ है जन को राम नाम आधारा हर नाम जपत हर नाम में सो है दुर्मत भागहीन मत फीके नाम सुनत आवे मन रोहे कौआ काग कौ अमृत रस पाई है तृप्त विष्टा खाए मुख गो है अमृत सर सतगुर सतवादी जितना तै कौआ हंस हो है नानक धन तन वड्डे वड भागी।

मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुर सरनाई, मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नावे त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख खावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई, जो जन हर प्रभ हर हर सरना।

जिन्ना अन दिन हर प्रभ पुरख ते आया, मेरा मन तन बिरहो गुरसिख पग लाया। मेरे प्राण सखा गुर के सिख भाई, मोको करहो उपदेश हर मिलै मलाया रहाओ। जां हर प्रभ पावै तां गुरमुख मेले, जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया। वड भागी गुर के सिख प्यारे, हर निर्बाणी निर्बाण पद पाया। सत संगत गुर की हर प्यारी, जिन हर हर नाम मीठा मन पाया। जिन सतगुर संगत संग ना पाया, से भागहीन पापी जम खाया। आप कृपाल कृपा प्रभ धारी,

जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभु पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया हुआ वड भागी हर नाम ते आवे।

मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे, रहाउ तीर्ज धर्म गुरमत हर पाया, नित हर नामे हर सिउ चित लावे, अमृत बचन सतगुर की बाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे, निर्मल नाम जित मैल न लागे, गुरमत नाम जपै लिव लावे, नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया, ते भागहीन मोहे मर जावे, आनंद मूल जग जीवन दाता, सब जन को आनंद करहो हर त्यावे, तू दाता जी सब तेरे, जन नानक गुरमुख बख्श मलावे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुजरी महला चौथा घर तीजा, माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना कहो संबंध हर कर दिए, हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वस है, शरीर रहाओ भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई, विचे गृहस्थ उदास रहाई, जब अंतर प्रीत हर सिउ बन आई, तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ पाई, जित कारे कम हम हर लाई, सो हम करहें जो आप कराई, जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई, गुजरी महला पंजवा चौपदे कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, काहे रे मन चितवै।

माधो जी सत संगत मिले से तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके कास्त हरिया रहाउ जनन पिता लोक सुत बनता कोई ना किसकी तरिया।

शरिया उन कवन खिलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाई।

पूरब ही ले जात हिन मह थाप उथापन हारा आपन हाथ मतांत स्यान पकाहू काम नायात जो अनुरूपी उठाकुर मेरे होए रही ओह बात रहाओ देश कमावन धन जोरन की मनसा बीचे निक से सास लश्कर नेब खवास सब त्यागे जम पोयूठ सदास होए अनन मन हट की दृढ़ता आप सुकौ जनात जो अनिंद निंद कर छोड्यो सोई फिर खात सहज सुपाई भई कृपाला तिस जन की काटी फास कहो नानक गुरपुरा भेटिया प्रवान ग्रस्त उदास गुजरी महला पंजवा नाम निदान जिन जन जप्यो तिनके बंधन काटे काम क्रोध माया बिख ममता एह ब्याद ते हाटे हर जस साध संग मिल गायो गुर प्रसाद पयो मन निर्मल सर्व सुखा सुख पायो रहाओ जो किस की यो सोई भल मानै ऐसी भगत कमानी मित्र सत्तर सब एक समानी जोग जुगत निशानी पूरन पूर रहो सर्ब थाई आन न कतहू जाता घट घट अंतर सर्ब निरंतर रंग रवे हो।

सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस काटे रहाउ माया के संबंध सैन साक कित ही काम ना आया हर का दास नीच कुल ऊचा तिस संग मन बाछत फल पाया लाख कोट बिखिया के बिंजन ता मह त्रिशन ना बूझी सिमरत नाम कोट उजियारा बस्त अगोचर सूजी फिरत फिरत तुमरे द्वारे आया पै पंजन हर राया साध के चरण धूर जन बांछे सुख नानक एहो पाया गुजरी महला पंजवा पंच पदा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रथमे गर्भ माता कह वास्ता ऊहा छोड़ धरन मह आया चित्र साल सुंदर बाग मंदर संग न कछु जाया अवर सब मिथिया लोभ लभी गुरपुरे दियो हर नामा जी को एहा वस्त फबी रहाउ इष्ट मीत बंदप सुत पाई संग बनता रच हसिया जब अंती अवसर आए बनयो है उन पेखत ही काल ग्रसिया कर कर अनर्थ बिहाजी संपै सोयना रूपा दामा पहाड़ी को ओहो पहाड़ा मिलिया होर सगल भयो बेरा।

मुन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपनही तीन देव अर कोड़ तीसा तिनकी हैरत कश न रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मर्मा गुर कृपा ते लही रहाउ जीत जीत जीते सब थाना सगल भवन लपतही कहो नानक साध ते भागी होए चेरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मटाया ठाकुर होए आप दयाल भई कल्याण आनंद रूप हुई है उबरे बाल गोपाल रहाओ मिलवर नारी मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार गुजरी महला पंजवा मात पिता भाई सुत बंदप तिनका बल है थोरा अनक रंग माया के पेखे किस साथ न चाल है पूरा ठाकुर तुझ बिन आहे ना मोहरा मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही मैं आहे हो तुमरा तोरा रहाओ बल बल बल बल चरण तुम्हारे इहां उहां तुम्हारा जोरा साध संग नानक दर्श पायो दिन से ओ सगल निहोरा गुजरी महला पंजवा आल जाल प्रम मोहत जावे प्रभ सेती रंग लाई मन को एह उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जिस पेटे टूटह माया बंद बिसरना कबहू जाई रहाओ करत करत अनक बहु भांति नीकी एह ठहराई मिल साधु हर जस गावे नानक भवजल पार पराई गुजरी महला पंजवा खिन मह थाप उथाप नहारा कीमत जाए ना करी राजा रंक करे खिन पीतर नीच है जोत तरी त्याई अपनो सदा हरी सोच अंदेसा ताका कहां करिए जा मह एक करी रहाओ तुमरी टेक पूरे मेरे सतगुर मन सरन तुम्हारे परी अचेत याने बारक नानक हम तुम राखो तार करी।

0: समाए तह परम अंधेरा नाही ठाकुर जा सिमरा तू ताही कर कृपा सर्व प्रतपालक प्रभ को सदा सलाही रहाओ सास सास तेरा नाम सुमारो तुम ही को प्रभ आही नानक टेक पई करते की और आस बढ़ानी लाही।
1: केलबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित कीता जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानु सुझाव दिंदे रहोगे।
2: ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ। ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3374 ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਏਰੀਆ ਕੋਡ 250-392-3375।
3: ਸਾਡਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ, singhsabha2@gmail.com।
4: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: गुरमंत्र
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

गुरमंत्र। ऐसी अपार बख्शिश कीती है साडे सतगुरु जी ने साडे ते, हर तरह के पाप का नाश, हर तरह के दोख का नाश, हर तरह के रोग का नाश। गुरबाणी कितने विचार के देखी, जे तृष्णा है तृष्णा बूझै हर कै नाम, जे होमै वाहेगुरु गुरमंत्र है जप होमै खोई, जे रोग है सर्ब रोग का औखद नाम। कैसी कृपा की गुरु साहब ने साडे ते, भाई जे तैनू रोग लग्या है नाम जप, जे तृष्णा च फसिया होया है नाम जप, जे पापा तो उबरना है नाम जप। ऐसा निर्मोलक हीरा साडे सतगुरु जी ने साडे सानू बख्शिया है, ते जे हुण भी ना जपीए माफ करियो, साडे तो वड्डा मूर्ख कोई नहीं जे होना। जे हुण भी गुरु की दित्ती सिक्ख्या नू ना ग्रहण करिए, सानू की चाहिए, जतन करिए असी अपने मन नू समझाउण दा। इह मन उही मंगदा ना जो इहनू चंगा लगदा, आपो अपने मन नू पुछ के वेखिए की चाहिए। सुख चाहिए, गुरु पातशाह कहिंदे ने ना कि इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर जाकै बस है काम धेना। की रह गया? सर्व सुखदाता, कोई एक दो नहीं, सारे सुखा दा दाता है सतगुरु। सो ऐसा हर त्याई है मेरे जीड़े, ते उह सारे सुख किवें प्राप्त होने ने, हे मेरे मन उस परमात्मा नू उस हरी नू ध्याउणा कर, तां सर्व सुख पावें मेरे मना। इस तरीके नाल अपने मन नू समझाउण दा जतन करिए। जे फिर नहीं मनदा ना, तो इस मन को दूजे तरीके नाल समझा लो कि श्री राम नामा उचर मना आगे जमदल बिखमकना, कि अगे जमा का डंडा तैयार है, हुण तां मन जा। किसे तरीके गुरु हजूरी च बैठ के आपां अपने मन को समझाउण दा जतन करिए, क्योंकि जेकर असीं अपने मन को समझा लांगे ना, तां ही यह मन रो रो के गुरु पासों नाम की दात मंगेगा। ये मन तां तक नहीं मंगदा जब तक इस मन नूं अहसास ना होवे। जो इस मन नूं चंगा लगदा है मन वह मंगदा है, तो इस मन नूं आपां समझाउणा है। तो सच जाणियो कल्लियां साडे वसदा नहीं इस मन नूं समझाउणा। भगत कबीर जी भी कहिंदे ने, ग्रह तज बन खंड जाइए चुन खाइए कंधा, अजू विकार ना छोड़ी पापी मन मंदा, बिखै बिखै की वासना तजी है नह जाई, अनक जतन कर राखी है फिर लपटाई। ये मन नहीं मनता, हल की है क्यों छूटो कैसे तरो भव जल निद भारी, राख राख मेरे बीठला जन शरण तुम्हारी। गुरु की शरण में आके गुरु की गोद च बैठ के जे आप अपने इस मन को समझाने का जतन करांगे ना, सच जाने साडे जतन के नाल नाल गुरु साहब की कृपा भी शामिल होगी, तो बड़ी जल्दी आप इस मन को समझा सकांगे। आओ जतन करिए, गुरु पातशाह ने इन्ना निर्मोलक हीरा दिता है सानू। आओ गुरबाणी दे राही आपां सारे रल के पढ़िए, किन्नियां सुंदर पंक्तियां ने। अमृत नाम

और एक केवल कहण दी गल नहीं इतिहास गवाह है जिन्ह ने जपया वह ना डिगे ना डोले धन धन बाबा दीप सिंह जी यह सौखा नहीं सी एक हाथ च सीस एक हाथ च खंडा लैके लड़ते जा रहे एक गुरमंत्र का प्रताप सी ये भगती सी ये नाम का प्रताप सी।

नहीं नहीं पूरन होए त्रिपतानी पूरन होए त्रिपतानी पूरन होए पूरन होए त्रिपतानी पूरन होए त्रिपतानी पूरन होए पूरन होए त्रिपतानी पूरन होए त्रिपतानी पूरन होए पूरन होए त्रिपतानी वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु।

0: जो गावे प्रभु के गीत, जो गावे प्रभु के गीत, जो गावे प्रभु के गीत, जो गावे प्रभु के गीत,
1: गीत
0: बस बस बस बस बस।

0: जो बोले हर हर नाम, जो बोले हर हर नाम,
1: जो बोले हर हर नाम, जो बोले हर हर नाम,
0: जो बोले हर हर नाम, जो बोले हर हर नाम,
1: जो बोले हर हर नाम, जो बोले हर हर नाम।
0: तिन जम छड़ गया, तिन जम छड़ गया,
1: तिन जम
0: छड़ गया, तिन जम छड़ गया, जो थे वह सत मुरा, जो थे वह सत मुरा,
1: जो थे वह सत मुरा,
0: वेदा सत मुरा, जो वेदा सत मुरा,
1: वेदा सत मुरा, वेदा सत मुरा,
0: से पौजल

0: तीरी मेरे मन
1: प्रेम को हर तीर मेरे मन प्रेम को हर तीर
0: मेरे मन प्रेम लगो हर तीर मेरे मन
1: प्रेम लगो हर तीर मेरे मन
0: ऐसा प्रेम दा तीर मेरे मन च वजे है ना कोई नहीं समझ सकता जे कोई जान सकता है ना
1: हमरी देह

धर्मदाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमुख निमुख तुम ही प्रतपाल हो हम बारिक तुमरे तारे। तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमुख निमुख तुम ही प्रतपाल हो हम बारिक तुमरे तारे। जेहि बाएक कवन गुण कहिए बेशुमार बेअंत स्वामी तिरुवंत नक नहीं लहिए। कोट पराध हमारे खंड हो अनक विधि समझाव हो हम अज्ञान अल्प मत ढोरी तुम अपन बिरध रखाव। तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सजन सुहेले।

तुम ही सजन सुहेले राखो राखन हार दयाला नानक करके गोले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ जाप जी साहिब एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निरपहु निर्वैर अकाल मूरत अजूने सहसाद आद सच जगाद सच है भी सच नानक हो सी के सच सोचा सोच न हो गई जे सोचे लखवार चुका है चुपना हो गई जे लाज रहा जगतार चुकया पुपना शरीर बन्ना तनिया पहार साहस सियाणप लख हो है ता इक न चल नाल किब सुचारा हुई है किब कूड़ा है टुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहया जाई हुक्मी होवन भी हुक्म लै बड़ियाई हुक्मी हुक्म लई हुक्म लै कुदरत सुख पाई है एक न हुक्मी बख्शी सब एक हुक्मी सदा पवाई है हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म न कोय नानक हुक्म जे बुझाए तो हम कह न कोय गावे को तारण हुवे किसे तारण।

ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਸ਼ਪਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚੇਹ ਨਰ ਵਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਮਹਿਨ ਦੇਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਗੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤਨ ਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਤੋਜ ਕਹਿ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹ ਸਹਾਣ ਗਣੇ ਜੈ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਾਰਿ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕੈਤ ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਣ ਕਰਮ ਨਾਮ ਵਰਣਤ ਸੁਮਤ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਸੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਲੀ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਪਾਲੀ ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਕਾਈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਈ ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਧਰਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਕਾਮੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਬਾਹੀ ਨਮਸਤੰਗ ਅਠਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਛੇਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗਾਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰਗ ਉਦਾਰੀ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਾਰੀ ਨਮਸਤੰਗ ਸੋਇਕਾ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੇਕਾ ਨਮਸਤੰਗ ਪੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਪਰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦੇਸ਼ੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਪੇਸ਼ੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸ਼ੋਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਠਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਦਾਨੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰਗ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੰਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਮੇ ਨਮਸਤਾਸਰੰਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਗਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਜਵੇ ਨਮਸਤਾਸਰਜਵੇ ਅਦੇਸੰਗ ਅਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਭਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਾਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਪੇਵੈ ਨਮਸਤੰਗ ਅਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਬਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਾਸਤ ਦਿਆਲੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਭਰਣੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਮਰਣੇ ਨਮਸਤੰਗ ਜਰਾਰੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰਤਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਵਤੰਦੇ ਨਮੋ ਅਸਤਾ ਬੰਦੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਿਰਵਾਕੇ ਨਮਸਤੰਗ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰਗ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰਗ ਮਹਾਂਤੇ ਨਮਸਤਾਸਤਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰਗ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਸੁਖੰਗ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪੋਖੰਗ ਨਮੋ ਸਰਵ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਵ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ ਚਾਜਰੀ ਚੰਦ ਸਭ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਪੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਪੇਖ ਹੈ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਮ ਹੈ ਅਦੇਹ ਹੈ ਅਪੇਹ ਹੈ ਜੀਤ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤ੍ਰਮਾਨ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਰ ਗਹਿ ਸਰਗ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਆਜਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਵਰਣ ਹੈ ਅਪੂਤ ਹੈ ਵਰਣ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਪੰਜ ਹੈ ਜੂਜ ਹੈ ਜੰਜ ਹੈ ਅਮੀਕਰ ਵੀਕ ਹੈ ਦੰਦ ਹੈ ਬੰਧ ਹੈ ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਸੂਜ ਹੈ ਕਾਲ ਹੈ ਜਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਜਹ ਹੈ ਅਨੰਤ ਮਹੰਤ ਅਲੀਗਾ ਨਿਰਵੀਗਾ ਨਿਰਬੰਬ ਹੈ ਸੰਭ ਹੈ ਅਗਮ ਹੈ ਜਮ ਪੂਤ ਹੈ ਸੂਤ ਹੈ ਲੋਕ ਹੈ ਸੁਖ ਹੈ ਕਰਮ ਹੈ ਪਰਮ ਹੈ ਜੀਤ ਹੈ ਪੀਤ ਹੈ ਭਾਗ ਹੈ ਮਾਨ ਹੈ ਨਿਦਾਨ ਅਨੇਕ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਵਮਾਨੇ ਸਮਾਸੀ ਨਦਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਪੇਖੀ ਅਪੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਵ ਪਾਉਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਿਰਸੰਗੀ ਮਾਥੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਦਾਨ ਦਾਨੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦਿ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਬਾਲ ਪਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਾਸੀ ਸਰੂਪੇ ਪ੍ਰਪੰਗੀ ਪਰਮਾਸੀ ਸਮਾਸੀ ਬਹੂਤੇ ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾ ਨੇ ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਸੁਗੰਗ ਪਰਮ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਸੁਗੰਗ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜੇ ਸੁਗੰਗ ਪਰਮ ਬ੍ਰਿਧੇ ਨਮੋ ਸਸਤ੍ਰ ਪਾਣੇ ਨਮੋ ਅਸਤ੍ਰ ਮਾਣੇ ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਅਪੇਖੀ ਪਰਮੇ ਅਭੋਗੀ ਅਭੁਗਤੇ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਸੁਗੰਗ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ ਨਮੋ ਨਿਤ ਨਾਰਾਇਣੇ ਗਰੂਰ ਕਰਮੇ ਨਮੋ ਬੇਦ ਪਿਤੋ ਦੇਵੇ ਸੋ ਧਰਮੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਰਾਗ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਨਮੋ ਭੂਪ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਦਾਨ ਦਾਨੇ ਨਮੋ ਮਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਰੋਗ ਰੋਗੇ ਨਮੋ ਸੰਗ ਸ਼ਨਾਨੇ ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰਗ ਨਮੋ ਯੰਤਰ ਯੰਤਰੰਗ ਨਮੋ ਇਸ਼ਟੇ ਇਸ਼ਟੇ ਨਮੋ ਤੰਤਰ ਤੰਤਰੰਗ
सदा सचिदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे रूपे समातुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध करता अधु उर्ध अर्धंगो भरता परं परम परमेश्वरं पुरुष बालं सदा सर्वदा सचिदाता दयालं अशेदीय पेदीय नामंग कामं स्मासुपराजी स्मासा सुगामं तेरा जहूर जाज भीषम जले हैं खले हैं पीता पे हैं प्रभु अजूगा देसा पेश है एक जंग पर याद शाम आगा दे अबाद नंदी स्वरूप है नमो सर्व मान्य समाज की निधान नमा स्वंग नरनाथी नमा स्वंग परमाथे नमा स्वंग गंजे नमा स्वंग पंजे नमा स्वंग काले नमा स्वंग पाले नमो सर्व देशे नमो सर्व देशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो सा शाहे नमो महा माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोके नमो सर्व रोके नमो सर्वजीतंग नमो सर्वपीतंग नमो सर्वज्ञानंग नमो परमतानंग नमो सर्वमंत्रंग नमो सर्वजान्त्रंग नमो सर्वद्रेष्टंग नमो सर्वकृष्टंग नमो सर्वरंगे त्रिभुंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अफिजे अफिजे समातंग प्रसिजे कृपालंग स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सदा सर्वदार दिश दिंग निवासी चरपट छंद दव प्रसाद अमृत करमे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लाख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पाने सर्वंग माने सर्वंग प्राणंग सर्वंग प्राणंग सर्वंग भूता सर्वंग दूता सर्वंग देवंग सर्वंग देवंग सर्वंग काले सर्वंग पाले रूआल शांत तव प्रसाद आदरूपनाद मूर्त जोन पुरुष पारु सर्वमान्तरमान देव पेवादुदार सर्वपालक सर्वकालिक सर्वकोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवधूत रूप प्रसाद नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख आदि पुरुष उदार मूर्त जो नाद शेख देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग जत्र तत्र दिशा दिशा हो फैले वन राग नाम काम विहीन पेखत ताम हूं न जाही सर्वमान सर्वतरमान सदैव मान पताही एक मूर्त अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खिल खिल अखिल खिल न अंत को फिर एक देव वेव न जानी जे बेदर्क देव रूप रंग न जात पात सो जानी के जेव सात मात न जात जाकर जनम मरण विहीन चक्र बकर फिर जदर जाको मानी प्रतीन लोक चौदंग के विषय जग जाप जय जाप आद देव नाद मूर्त सप सब जय साप परम रूप पनीत मूर्त पूर्ण पुरख पार सर्व विश्व रचियो सुयम पवगण पंजन हार कालहीन कला संयुक्त कल पुरुष रेश धर्म धाम सु परम रात भूत लख पेश अंग राग न रंग जाके जात बादना नाम गर्भ गंजन लोट पंजन मुक्त दायक धाम आप रूप अमी गान सद एक वर्ख दूत गर्वगंज सर्व पंजन आद रूप सूत अंग ही न भंग न तम एक पुरख पार सर्व लायको सर्व गायको सर्व कुप्रत पार सर्वगंत सर्वहंत सर्व तयन पेख सर्वशास्त्र न जाने निरूप रंग जान रेख परम वेद प्राण जाक नीत पांस नित कोट सिमरत प्राण शास्त्र न आवई वाचित मद पार छंद तव प्रसाद गुणगण उदार महिमा पार आसन भंग उपमा नंग अनुभव प्रकाश निर्दनया नाश राजन बाह शान शाह राजन राज पानन पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालन बाल रंकन रंग कालन काल अनुभूत अंग अपापंग गतमित पार गुणगण उदार मुनगन प्रणाम निरपैने काम आत दुत प्रचंड मिदगत अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व प्रणाड्य आंडन बाडय चाचरी छंद तब तब प्रसाद गोबिंदे मकंदे उदारी अपारी हरियन करियन निरनामे कामे पजंग प्रजात छंद चतर चकर करता चतर चकर हरता चतर चकर दानी चतर चकर जानी चतर चकर वर्दी चतर चकर भरती चतर चकर पाले जतर जकर काले जतर जकर बासे जतर जकर मासे बासे चाचरी चतर जकर माने आए जतर जकर दाने आए चाचरी शामल न सत्र न मित्र न परम न पित्र न कर्म न निकल न कर्म न गाय जन न चित्र न मित्र
परे हैं पवित्र है प्रतिष्ठा दिशा दृशा गृह भगवती शांत दग प्रसाद तखते क्या सज देशा क्या पिज देशा क्या गंज कर्म है क्या पंज परम है क्या पिज लोका क्या दत्त सुख है क्या भूत भरना है क्या भूत करना है क्या राजम प्रवाह है क्या धर्म तुझा है क्या अशोक भरना है क्या प्रभा भरना है के जगतम कृति है के सदरंग क्षत्रिय है के ब्रह्म स्वरूप है के अनुपा अनुप है के आदो देव है के आप देव है के चित्रंग बहिना है के चादी मैं के रोजिर जाकर ही मैं रहा गए के बाग बे आवे के गैबुल गैब आए के आप बुल गुना है के शान जाए के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज करीम है के कर्म करीम है के सर्वं कली हैं के सर्वं कली हैं के सर्वतर माने हैं के सर्वतर जाने हैं के सर्वतर गावन हैं के सर्वतर भावन हैं के सर्वतर देशा है के सर्वतर पेशा है के सर्वतर राज जाए के सर्वतर साज जाए के सर्वतर दीना है के सर्वतर लीना है के सर्वतर जाहु के सर्वतर पाहु के सर्वतर देशा है के सर्वतर पेशा है के सर्वतर काल है के सर्वतर पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र कोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र माने है सदैव प्रधान आए के सर्वत्र जापे आए के सर्वत्र थापे आए के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलीम है के परमं सहीम है के अगलो लाम है के सायो कलाम है के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेश सलाम है सलीख सम राम है गनीम सकाशता है गरीबल परासता है बुलंदल मकान है जमीन और जमान है तमीज उल तमाम है रुजवल रान है हरिफल अजीमा जाग जगीन है नेक उतरांगा पीर है पंग है अजीज नवाज है गनी मुल सराज है त्रिमोद में भूत है विपो पर पवित प्रवाह है सजौत सदा है सदैव स्वरूप है प्रीति अनूप है समाज तो ब्राज है सदा सर्वसाज है समाज तुल सलाम है सदैव काम है निर्वाध स्वरूप है गाध है अनूप है वह अंगाध रूप है अनाद स्वरूप है नंगी अनामे दृपंग काम है त्रिवर्ग त्रिभाग दे गंजे गाते सुगंग सर्वभाग्य सुसर्भा निरागे त्रिपुंग स्वरूप है सजय सूत है निरकुंग प्रणास है मृत्युल प्रवास है निरुक्त प्रवाह है सदैव सदा है विपुत स्वरूप है प्रज्योत अनूप है चाचरी छंद गले हैं थले हैं पीता वे है प्रभु अजूआ देश है पेश है कुजंग प्रयात छंद

मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम हर भर अखंड हर नर पर पांच वन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड भर नर अमंड अन पवन आशु मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल धर मुदाम अंश दियांग आसन अपंग उपमा पार गात्म सुधार जल धर अमांडो देश देश अपांडो जल धर महांत देश देश बेअंत अन पवन आशु त्रत कर तुराश आजन बाह कसाह ओंकार आदि कथनी नायुद कलखंड ख्याल गुरु भर अकाल कर कर प्रणाम जिजन नाम अंश जिगात अजिजन बात अंजन जिगात अन चंद जिगात अंधरंज बात अन टुट भंडार अन छट पार आडीठ धर्म अत डीठ कर्म अन प्रणनंत दाता महंत हर बोल मना चंद तब प्रसाद करणालिया है हर कालिया है कल खंडन है मैं मंडन है जगदीश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वभारण है त्रत के धरण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपास है सर्वनाश है करणा कर है विश्वंबर है सर्वेश्वर है जगदीश्वर है ब्रह्मांड स है कल खंड स है वर्ते पर है करुणा कर है जपा जप सपा सप है अकृता कृता मृता मृत है।

नमो युद्ध युद्ध नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्रेन्द्र नारिंग भूते अलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आश्वास नमो भंग भंगे भंगी रूपे नंगी अनामे अनंगी अनामे त्रिभंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक श्री शाम

जो सभी जागो श्री भगवान को भेद न पायो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। पातशाही दसवीं कबिल बाज बेनती चौपई हमारी गर्भा दे रक्षा पूर्ण होए जित की इच्छा तब चरण।

तुम सब ही तेरे तो निरालम जानत भेद तेरे अरियालम निरंकार निर्विकार निर्लंब वाद अनिल अनाद असंभ दाता मूढ़ उचारत पिता जय को पेव न पावत पिता सांको कर पाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेवो निरंकार का जीवन तनह पेव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पैन पैन तोहे देती।

जी अस्तोज उदव सरणी परे तनके दोष दुमतावे मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तनके तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निष्ठ नहीं आए हैं रक्षा हुई ताए सब काला दुष्ट रिष्ठ करण काला कृपा दृष्ट संजय हरे हो ताके दाव जनक मो हरे हो रिद सद कर्मो सब हो।

0: बाजार नीचे नीचे मिलते चिरमन पूरे तार बाजारी बाजार में आई मिली बाजार कावे राजी रानिया बोली आसदार लक्ष का चिंत लक्ष का तिहार विष्णु पाई नानी का
1: ज्ञान ना गली तू भी है कथना करड़ा।

मिट्टी मुसलमान की पेड़ पैसे जल्दी करे चुका जल जल रोवे बकड़ी चढ़ चढ़ पवे गया नानक जिन करते कार किया।

पाए, हर का नाम मन वसाए, नानक नरकर सो पाए, आज संदेश दिन केवल हम सब पाए, पौन पवित्र मन पाके।

साधारण शक्ति है, वो एक मन अर्धत्यागी है, भक्त भी उपाई है, ये भी पार कमाई है, ये हुआ तुम दिखिया, सांस दिखाई है।

तग न इंद्री तग न नारी पलके सुख कवे निसदारी तग न पैरी तग न हथी तग न देवा तग न वितगा अपने बच्चे बट्टा देवरा सची ले पहाड़ करेगी।

नानक जिनी गुरमुख बुझिया बिना सुनाए बिना सुनाए कौड़ी ताले जोड़े।

प्रभु का सिमरन पूर्ण आसा, प्रभु का सिमरन मन की मल जाए, अमृत नामृत माह समाए। प्रभु जी बसै सादकी दसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभु को सिमरह से तनवंते, प्रभु को सिमरह से पतवंते। प्रभु को सिमरह से जन प्रवान, प्रभु को सिमरह से पुरुष प्रधान। प्रभु को सिमरह से वे मोहताजे, प्रभु को सिमरह से सर्व के राजे। प्रभु को सिमरह से सुखवासी, प्रभु को सिमरह सदा नासी। सिमरन से लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगर वाला। प्रभु को सिमरह से पर उपकारी, प्रभु को सिमरह तिन साद बलिहारी। प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावे। प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता। प्रभु को सिमरह तिन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमरह बसे हर नेरे। संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबूना चूरे। प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहस मानी। प्रभु कै सिमरन हित चलयासन, प्रभु कै सिमरन कमल बेगासन। प्रभु कै सिमरन अनहद तुनकार, सुख प्रभु सिमरन कंत न पार। सिमरह से जन जिन को प्रमया, नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर

अनक जतनकार कृष्ण ना त्रापै पेख अनेक अग नहीं बुझै कोट पाव दरगह नहीं सजै छूटत नाहीं उपयाल मोह व्यापै माया जाल अवर करतूत सगली जमडान गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हर का नाम जप दुख जाए नानक बोलै सह सुभाए चार पदार्थ जेको मंगै साध जना की सेवा लागै जेको अपना दुख मिटावै हर हर नाम ददै सत गावै जेको अपनी शोभा लूरै साध संग होमै शूरै जेको जन्म मरण ते डरै साध जना की सरनी पै जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक तांकै बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जा का मिटै अभिमान आपस कौ जो जाने नीचा सो गनिया सब ते उचा जा का मन होए सगल किरीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेख सगल सृष्ट साजना सुख दुख जन सम प्रष्टिता नानक पाप पुरने लिपा निरतन को तन तेरू नाओ नावे को नाओ तेरा थाओ ने माने को प्रभ तेरू मान सगल कटा को देवदान कर्ण कराम नहार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत में जानो आपे अपन संग आप प्रभराते तुमरी उस तुम ते हो ए नान क्यावर ना जान सिको ए सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म

तो समझा पूरा काम विष्णु पद गावा गंग जतन करा तो पी सरपंग कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तुआ उस गवन करता हार करना मैं दीन बेनती करा नानक तुमरी कृपा तरा संग सहाय सो आवे ना कीत जो बराई तां संप्रीत बलुआ के ग्रह भीतर बसै अनंत केल माया रंग रसै दृढ़ कर्मा नै मनै प्रतीत काल न आवै मूढ़े पीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोभ द्रोह यहूं जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लो अपन कर कर्म तू ठाकर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा महसू कनेरे कोई ना जाने तुमरांत उचे ते उच्चा भगवंत सगल समगरी तुमरै सूत्र धारी तुम ते

पत जाए। अष्टपदी दस वसूले पक्ष पावै, एक वस्त कारण बिखुट गवावै, एक पीना दे दस पी हिरले, तौ मूड़ा को कां करे। जिसा पर स्यो नाही चारा, ताको की जय सतनम सकारा, जा कै मला का प्रमिता, सर्व सूता हूँ मन उठा। जिस जाने अपना हुक्म बनाया, सर्व थूक नानक तिन पाया, अंतह अपनी देरास, खात पीत बरत अंदोलास। अपनी अमान कछ बहुर सावले, अज्ञानी मन रोष करे, अपनी प्रतिताप ही खोवै, बहुर का विश्वास न होवै। जिसकी बस्त तिस्या कै रखै, प्रभु की आज्ञा मन मत है, उससे चौकन करै निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनक भांत माया के हेत, सर्प होवत जान अनेत, बिरखी छाया त्यो रंग लावै, ओह बिनसै ओह मन पछतावै। जो दिसै सो चलनहार, लपत रहो तै अंध अंधार, बटाऊ त्यो जो लावै, नेह ताको हाथ ना आवै कहे। मन हर के नाम के प्रीत सुखदाई, कर कृपा दान काप लै लाई, मिथ्या तन धन कुटम सुभाया, मिथ्या हो मैं ममता माया। मिथ्या राजोबन धन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पे कस्ता, मिथ्या ध्रोह मोह अभमान, मिथ्या आपस ऊपर कर्त गुमान, अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जी वह हर के चरण। मिथ्या सरवण पर निंदा सुनह, मिथ्या हस्त पर तर्प कोहिर, मिथ्या नेत्र पिख पर त्रै रुपाद, मिथ्या रसना भोजनन स्वाद। मिथ्या तन पर विकार कूता वह, मिथ्या मन पर लोभ लुभा वह, मिथ्या तन ही पर पुकारा, मिथ्या बास लेत बिकारा। बिन बुझे मिथ्या सपै सफल दे, नानक हर हर नाम लै, बिरथी साकत की आर जा, साच बिना कहो बत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंत, मुख आवता कह दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए, मेघ बिना जो खेती जाए। गोविंद भजन बिन बैठे सब काम, ज्यों कृपन के निरार्थ दाम, धन धन ते जन जय कट बस्यो हर नाव, नानक ताक बल बल जाऊ, रहत अवर का छवर कमावत, मन ही प्रीत मुखो कंडलावत। जान नहार प्रभु पर बीन, बार पेख ना काहू पीन, अवर उपदेश है अपना कराय, आवत जावत जन्म मराय। जिसका अंतर बसै निरंकार, तिसकी सीख करै संसार, जो तुम पाने तिन प्रभु जाता, नानक उन जन चरण प्राता। करो बिनती पार ब्रह्म सब जानै, अपना किया पह मानै आपह, आप आप कर नबेरा, किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा। उपाव स्यानव सगल ते रहत, साव कच जानै तुम की रहत, जिस भावै तिस लै लड़ लाए, संतनंतरिया समाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरी सलोक, काम करो दर लोभ मोह, बिनस जाय अहमेव, नान प्रव शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदे। जेहे प्रसाद क्षति अमृत खाहे, तिस ठाकर को रख मन माहे, जे प्रसाद सुगंधन तन लावै, तिसको सिमरत परम गत पावै। जेहे प्रसाद बसह सुख मंदर, तिसै त्याह सदा मन अंदर, जेहे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरो तिस रसना। जय प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याय त्यामन जोग, जय प्रसाद पाठ पटम्ब हटावै, तिसे त्याग कतवर लुभावै। जय प्रसाद सुख से सोई जय, मन आठ पैर ताका जस कवि जय, जय प्रसाद तो साको मन मुख ताको जस रसन बुखन। जय प्रसाद तिरो रहता धर्म, मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म, प्राप्त जी जब दर गह मन पावै, नानक पाठ ती कर जावै। जय प्रसाद आरोपन चंदेही, लिव लवो तिस राम स्नेही, जय प्रसाद तिरौला रहत, मन सुख पावै हर हर जस कहत। जय प्रसाद तेरे सगल चित्र ढाके, मन सरनी पाठा कर प्रभु तंक, जय प्रसाद तुको न पहुचै, मन साथ साथ तुमरो प्रभु उचै। जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह, नानक ताप की भगत करे, जय प्रसाद अभूखन पहरी जय, मन ते सिमरत कमालस की जय। जय प्रसाद अथवा ससवारी, मन तिस प्रभु को कबू नाम विसारी, जय प्रसाद बाग मिलक तनारा, करो प्रभु अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सद तिसै त्याई, तिसे त्याए जो कलख है, इहा उह नानक तेरी रखै। जय प्रसाद करै पुन बहुदान, मनाट पहर कर तिसका ध्यान। जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी, तिस प्रभु को साथ साथ सितारी, जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभु सिमरहु सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभु सिमर सदा दिन रात, जय प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कै।
जय प्रसाद सुन तन नाद जय प्रसाद बिख बिस्माद जय प्रसाद बुल अमृत रसना जय प्रसाद सुख जय बसना जय प्रसाद हस्त कर चला जय प्रसाद संपूर्ण फल है जय प्रसाद परम कृपा वह जय प्रसाद सुख सह समाव ऐसा प्रत्याग गौर कतला को गौर प्रसाद अनुप मन जागो जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्राप को मूल न मनोह विसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूल सूता को जाप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे ते सहजान मन सदा हजूर जय प्रसाद तू पावह सात रे मन मेरे तू सात रात जय प्रसाद सबकी गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा त्यो प्रगास प्रभु दया ते कमल विकास प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्वनदान प्रभु तेरी मह आपको कछु ना किन्हू लै जित जित लाभ।

साजना के अचर्ज कथाष्टपति साधक संगमल होत साधक संगमल सगली कोत साधक संगमित अवमान साधक संग प्रगट सो ज्ञान साधक संग बुझ प्रभ नेरा साध संग सभूत नेरा साधक संग पाय नाम रतन साधक संग कुपर जतन साध की महिमा वर्ण कौन प्राणी नान साध की शोभा ब्रह्मा समानी साधक संग या गोचर मिला साधक संग सदा प्रफुल्ल साधक संग का वह बस पंचा साध संग अमृत रस पंचा साध संग हो सब की रेल साधक संग मनोहर बैन साधक संग नक तू तावै साध संग स्थित मन पाए।

को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग पावै जन कोए। कर कृपांतरो तारै पश प्रेत मुगल पात्र को तारै सर्व रूप का उखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जुगत किते ना पाईऐ धर्म नानक तिस्म लै जिस लिख्या धुर करम। जिसका मन पर ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसन तिन पाय तिन पाया। सदा निकट निकटार दान सो दास दरगह प्रमाण अपने दास को आप कृपा करै तिस दास को सब सूजी परै। सगल संग्या तम उदास ऐसी जुगत नानक राम दास प्रभु की आज्ञा तिहतावै जीवन मुक सुखावै। तैसा हरख तैसा उत्सोग सदा आनंद तह नहीं प्योग तैसा सुवन तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी। तैसा मान तैसा अभमान तैसा रंग तैसा रजान जो बरताए साई जुगत नानको पुरखिया जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर रखा तैसा तिन नाओ आपे कर्ण क्राम जोग प्रभावै सोई फुन होगा। पसरे आप हो अनंत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अवनाश। सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल। श्लोक उस्तत करै अनेक जन अंत ना पारावार नानक रचना प्रभ रचि बहु विद्यानक प्रकार अष्टपदि। कई कोट हो पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट मन पर मह उदासी। कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपिस्रोते कई कोट आत्म ध्यान धारै कई कोट कब का विचार है। कई कोट नव तन नाम त्यावै नानक करते कांत ना पावै। कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिगात्म कोर कई कोट पर दर्व को हिराय कई कोट पर दुख ना कराय। कई कोट माया सर्व माहे कई कोट पर देश परमाहे जित जित लाभ तित तित लगना नान करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्धति जोगी कई कोट राज रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाय कई कोट पात्र वृक्ष निपजाए कई कोट पौन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल। कई कोट सत्य सून खतर कई कोट देव दानविंद्र सिर छतर सब समग्री अपने सुतारै नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै। कई कोट राजस्थान सातक कई कोट वेद प्राण समतर सात कई कोट के रतन समुद कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट के चिरजी वह कई कोट गिरी मेर सुवरण थी वह कई कोट जक नर प्रसाद कई कोट भूत प्रे सुपर मृगात। सावते नेरा सब हूते दूर नानक आपले पत्रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नर सुरुक निवासी। कई कोट जन्म है जीव अमरह कई कोट बहुजौनी विरह कई कोट बैठ ही खाहे कई कोट का लय थक पाहे। कई कोट किए तनवंत कई कोट माया में चिंत जह जह पाना तह तराखे नानक साहब किस प्रभु के हाथे। कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी। कई कोट प्रभु को खोजनते आत्म है पार ब्रह्म रहंते कई कोट दर्शन प्राप्यास तिनको मिलो प्रभु अमनास। कई कोट मंग है सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हो आप तो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन। कई कोट खानी अरखंड कई कोट

न तृप्तावा खाप कमराय बिना संतोष नहीं को राजा सुख नमनोट बिथे सब काजय नाम रंग सर्व सुख हुए बड़पा गीत से प्राप्त हुए कर्ण करावने आपे आप सदा सदा

कोट मदे किन बिरलह तीना पला पला पलात्रा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट सुनी सरवन बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जप नानक मन प्री श्लोक संत सरण जो जन पर सो जन उदरनहार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत का दुखन आजा कट है संत का दुखन जमते नहीं चुका संत का दुखन सुख सब जाए संत का दुख नरक मह पाए संत का दुखन मत हो मलीन संत का दुखन सुबा तेहीन संत के हते को रख न कोई संत का दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे कर नानक संत संग निंदक भी तरह संत के दुखन ते मुख पवै संतन के दुखन काग ज्यों लवै संतन का दुखन सर्प जोन पाए संत का दुखन त्रिगत जोन क्रमाए संतन का दुखन कृष्णा मैं जलाए संत का दुखन सब कुछ लाए संत का दुखन ते सब जाए संत का दुखन नित निचाए संत दुखी का ता को ना है नानक संत पावै ता होए पी गत पाए संत कानंदक मां अतताई संत कानंदक खंतक न पाई संत का निंदक महा त्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखी हर दीना संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दुख मह दुख नानक संत पावै ता उसका पी होए मोख संत का दुखी तदा पवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डांला गए संत के दुखी को सब त्याग संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख ना सुख से डरे संत के दुखी को नहीं ठाउ नानक संत पावै तन लय मिलाए संत का दुखी अद्विचे टूटे संत का दुखी कितै काज ना पहुंचे संत के दुखी को ध्यान प्रमाइय संत का दुखी उजड़ पाइय संत का दुखी अंतर ते थोथा ज्यो सास बिना मिट टपकी लोथा संत के दुखी की जड़ किसना है अपन भी जापे ही साहे संत के दुखी को वरना रखन हार नानक संत पावै तन लय उबार संत का दुखी यों बिललाए ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजा ज्यो पाव की तनहीं त्रापै संत का दुखी छुटै के ला ज्यो गुआर तिलखेत महे दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सदमिथ्या कहत किरत निंदक का धुरही पया नानक जो तिस पावै सो इच्छिया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिला सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी न मरा ना जवाई है संत के दुखी की पूजन आस्था संत का दुखी उपचलना आस्था संत का दुख ना तृष्टा कोई जैसा पावै तैसा कोई होए पया कीर्तना मिटै कोई नानक जानै सच्चा सोए साव का तिसके ओ करना हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्तत करो दिन रात तिसै त्यावो सास ग्रास सावकश वर्ता तिसका किया जैसा करे तैसा को थी अपना खेला करना हार दूसर कौन कह विचार जिसनु कृपा कर तिस अपन नाम दे बड़ भागी नानक जन से सलोक जो ध्यान सोचनो सिमरो हर हर राय एका सर मन रखो नानक दुख भरम पौ जाय स्वरी मन की टेक बिटी सब जान देवन कोई कै भगवान जिसका दिया रह अगाए बहुर ना कृष्णा लग आए मारा रख है को आप मान कै किसना हाथ तिसका हुक्म सुख होय तिसका नाम रखन परो सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिगना लागै कोई उत्तक मन मह का निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना मृत पियो सदा तुहिला घर लह जी।

गंभीर भी सुजाना पाद ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद सा तेरे की चरनी पाओ नानक मन एहो नराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होगा हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जान होर अनद्रूप मंगल सजा कै सर्व शोक सुनिया करता कै राज मह राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर ग्रस्त मैं भोगी त्याय ताय भगत है सुख पाया नानक किस पुरखा कन्यंत न पाया जाकी लीला कीमत ना है सगल देव हारे अवगाहे पिता।

जाए ऊंच नीच के स्थान जैसा जनावे तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेकरा करंग नाना बितिनो विस्तार प्रभम नासी एकंकार नाना तिलक कर खिन माहे पूर पूरन सब खाए नाना बिर कर बंट बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जब तक जीवनान हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे स्मृत वेद प्राण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगले आकार नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम के संगुद्र सुन सरवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद मह सो जंगत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख समाय समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सतकर्णी निर्मल निर्मली जिस सह बुझाए तिसे सब भली सतनाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सतनाम गुरते पाई सत वचन साधु उपदेश सत ते जन जा कर द प्रवेश सत नरत बुझ जे कोई नाम जपत ता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जन अपनी मित गत जिसकी श्रेष्ठ तो करना हार अवर न बूझ कत विचार करते कीमत न जाने की नानक जो पावै सो वर्तिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बुझा तिस आया स्वाद प्रभ के रंग दा जिन रह गुर के बचन पदार्थ लह उदा ते दुख कट नहार जन कै संग तर संसार जन का सेवक सोड़ भागी जन कै संग एकलव लागी गुण गोबिंद की तंजन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोक आद सच जुगाद सच है ते सच नानक होसी भी सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत भेखनहार नाम सत सत्यावनहार आप सत सत

जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व सुख का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसकै दर्शा पा मिटावे, अवर स्याण सगली छाड, तिस जन की तू सेवा लाग, आमंजा न हो वी तेरा नानक, तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक, सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाउ, तिसकै संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ, अष्टपदी सतगुर सिखी करैपत पाल, सेवक को गुरसदा दयाल, सिखी गुर दुरमत मलहरै, गुर बचनिहार नाम उचरै, सतगुर सिखे बंधन काटै, गुर का सिख विकार तिहाटै, सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख वटभागी हे, सतगुर सिखा हलत पल सवारै, नानक सतगुर सिखो जी नाल सुमारै, गुर कै ग्रह सेवक जो रहै, गुर की आज्ञा मन में सहै, आपस को कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सत्य हावै, मन बिच सतगुर कै पास, ते सेवक के कार्य रास, सेवा करत होए नेकामी, सिख को होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिस आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस विश्वे गुर का मन मानै, सो सेवक परमेश्वर की गत जानै, सो सतगुर जिस हर नाव, अनेक बार गुर को बल जाओ, सर्व

एक अंधकार दीपक परगासे नानक परमो दुख ते नासे तप्त माय थान वरताई अनंत पया दुख नाथे पाई जन्म मन के मिटन देसे साधु के पूर्ण उपदेसे भव चुका निरपोह बसे सगल ब्याज मन ते कह नसे जिसका साथ कृपा तारी साध संग जपना मुरारी सिद्ध पाई चुके परम गवन सुन नानक हर हर जस रवन निर्गुणा सरगुण पियो ही कला धारण सगली मोही अपने चरित प्रव्याप बनाए अपनी कीमत आपे पाई हर बिन दूजा नाही कोए सर्व निरंतर को सोए उत्पोत रूप रंग पै प्रकाश साधका संग रच रचना अपनी कल धारी अनकबार न

एक सिमर नाम आधार अवर पाल समित विसारु चरण कमल में उतारु कर्ण कर्ण सो प्राप्त समरथ दृढ़ कर कहो नाम हरवत ए तन संत हो भगवंत संजना का निर्मल मंत एकास रखु मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुण ठुटता वह सो तनहार सेवा ते पावह जिस कौन बाचा मीत तो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा पजहर की सरनी अन चुपावी रोग न जाए रोग मिटे अरव खुद लाए सर्व निधान मह नाम निधान जप नंदर कै प्रवान मन प्रभु दोहर कै नाए जय दिस्तावता बैठाए ता को बिघन ना लागे कोई जां कै हृदय वसियार सोए काल ताती ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन सै पूरन होए हाथ भगत पाए आत्म प्रगास चित कर जाए बत्या नासी कहो नानक काटी जमपासी सत विचार कह जन साचा जन्म रह तू काचू काचा आवागमन मिटै पल सेव आप त्याग सन गुरुदेव त्यों रतन जन्म कहो उदारु हर हर सिमर प्राण आधार अनक पावना छूत न हारे सिमर शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंचित नानक फल पाए संग न चालसे रतना तू क्या लखता वह मूर्ख मना सोतमीत कुटंबर बनता इनते कहो तुम कौन सनाथा राज रंग मय विस्तार इनते कहो कौन छिटकार आसस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पसारी जिन दिए तिस बुझे न बिगाना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तूले अन्य भगत बिना बो डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल हो तुम्हारो चीत चरण कमल रखो मन माहे जन्म जन्म के खेल बिक जाए आप जपो अमरा नाम जपावो संत कह प्रत दत पावो सार भू सतार को नाओ सह सुबह नान गुण गाओ गुण गाव तेरी उतरत मैल बिनस जाय हो मैं बिफैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सास बरा सर नाम समाल छाट जनम सवली मना सासन पावै सचना हर पूंजी सन करो व्यवहारियां सुख तरगा जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाकै मस्तक लेख एको जापे को सालाहे सिमर एको मनाहे एक के गुण गाओ अनंत मंतन जापे भगवंत एको एक एक हराप पूरन पूरो प्रव्याप अनक विस्तारे ते पहे एक रात प्राचित गए मंतन अंतर एक प्रवरता गुर पर

प्रभक संदीन दयाल भगत वचन सदा कृपाल अनाथ नाथ को बिंद गोपाल सर्व कटा कर पाल आठ प्रकान करतार भगत ना के प्राण आधार जो जो जपै सोह पुनीत भगत पाला वै मन हित हम निर्गुनया नीच अजान नानक तुमरी सन प्रभु भगवान सर्व वैकुंठ मुकत मोख पाए एक निमुख हर के गुण गायन कराज भोग बढ़ियाई हर के नाम की कथा मन पाई बो भोजन का पर संगीत रत्ना जपी हर हरनीत भली सो करनी सो पातनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत।

पशुपति जब आकार एक छुना दृष्टि तापा पुन तब कहते होता। जब धारी अपन सुन समाध तब विरोध के संक मात। जब इसका परन चेहना जापत तब हर सो को किसे व्यापत। जब अपन आप पार ब्रह्म तब कहा किसोत परम अपन खेल आप वर्ती जा नान करना हार ना दूजा। जब होवत प्राप केवल धनी तब अन मुकत कहो किसको गनी। जब एक हरक मार तब नरक सुरु कहो कौन तार। जब निर्गुण प्रभ सह सुभाय तब शिव सकुत कहो किस ठाए। जब आप है आप अपनी जो तर तब कवन डर कवन कत डर। अपन चलेता करन हार नानक ठाकुर अगम पार। अविनाशी सुख अपने आसन तह जनमन को काम विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभ सोच तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगे गोचर प्रभिका तब चित्र गुप्त किस पुचक लेखा। जब नाथ नरंजन गोचर का दे तब कौन छिपे कौन बंधन बाधे। अपन आप ही अचर जा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा। जह निर्मल पुरुष पुरुष पत होता तह बिनमैल कहो क्या होता।

दोषं समावै तैकसै भूकं तृप्तावै करन करा मन करना हार। नानक करते कना सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कौन माय बाप मित्र सुत भाई। जह सर्व कला पे परवीन तै वेद कतेव कहां कोचीन जब अपन आप आपुर धारै तो सगन सगन कहां विचारै। जह अपन उचापन अपने रात है कौन ठाकर कौन कहिया चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप। जय अक्षर छेद अपेस माया उहा किसै व्यापत माया आपस को अपया देश तो गुण का नाही प्रवेश। जय का एक भगवंता तै कौन चिंत सला कै चिंता

काकर चीता सुख मनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सुहोत निदान सर्विच्छा ताकि पूरन होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए अस्थान बहु न होवै आमन जान हरतन काट चलै जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम शांत रित नाम निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप जोग परम ध्यान ज्ञान श्रेष्ट उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल त्योदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर सीए प्रतिष्ठिता ए फल तिस जन के मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोई सब दुख मह ताकि गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतात केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध सासंग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै

0: गुण नाम सुखमनी सब तेउचता की शोभा बनी नानक गुण नाम सुखमनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: केलबू दी रंगीली धरती दे वसनीक स्रोतियो तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ए प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम्स लेक तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हाँ कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाने लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे। साड़े स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तो आप जी नू पता ही है, जे नहीं तो वह भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अति फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साड़ा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

रस लयो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।